0: बस में बारे उन्हें बनने अब डेली प्रोसेस बड़ी स्ट्रांग करे रा पैसा कमाए रा गौर कीने रा बस में सोच में
1: हिमालय 그곳에서 소년의 꿈이 자라고 있다.